एक ही टाइम में सारे अनाउंसमेंट पढ़ दिए और आपके सारे गाने लगा दिए। आपको पसंद आया होगा, आई एम नॉट श्योर कि आपको पसंद आया होगा या नहीं, बट एक छोटी सी फीडबैक मिली थी। फीडबैक ये थी कि कई लोगों को अच्छा भी लगा कि लाइक नॉन स्टॉप गाने चल रहे हैं, और कई लोगों को नहीं भी अच्छा लगा, क्योंकि जो गाने जिनके लिए गाने डेडिकेट हो रहे हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो जिक्र करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा 1 घंटा भी बैठ सकता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि गाने फिर उतने नहीं लग पाएंगे जितना मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 14, 15, 16 गाने 1 ही घंटे में। तो ये हफ्ते अगस्त के महीने में जो मैंने फॉर्मेट कल लास्ट वीक ट्राई किया था, इस पूरा महीना ये वाला फॉर्मेट ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा फीडबैक आई कि लाइक यू नो आई शुड मेंशन कि मुझे जिन लोगों के लिए डेडिकेट किया है गाना उनका जिक्र करना चाहिए, तो फिर हम सितंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जितने भी गाने हैं जो हमारे पास इतने लोगों की रिक्वेस्ट पड़ी हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्लियर नहीं होते तो बार बार डीएम्स पे आती हैं कि भाई आप हमारा गाना नहीं लगाते हो, आप उस बंदे का गाना लगाते हो, इस फलाने का लगाते हो, तिनके का लगाते हो। तो भाई तो ये जो पूरा महीना है आई एम गोइंग टू जस्ट प्ले सॉन्ग्स फॉर यू गाइस, ओके। तो शुरू करते हैं, आवर वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है जी, एडमिशन अरेंजमेंट्स फॉर नर्सरी क्लासेस इन किंडरगार्टन्स फॉर द 2027 एंड 2028 स्कूल ईयर। गवर्नमेंट ने 2017 और 18 स्कूल ईयर से किंडरगार्टन एजुकेशन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में ज्वाइन किए हुए किंडरगार्टन्स सिर्फ उन बच्चों को एडमिट करते हैं जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर किंडरगार्टन एडमिशन, शॉर्ट में उसे RC भी कहा जाता है, या किंडरगार्टन एडमिशन पास जिसको AP भी कहा जाता है। अगर आप अपने बच्चे को 2027 और 28 स्कूल ईयर के लिए स्कीम KG में नर्सरी क्लास में डालना चाहते हैं, तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक RC या AP के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है, 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो, और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन करेगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन iamSmart ऐप या EDB की वेबसाइट से कर सकते हो। हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ले सकते हो। कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन 2 सेक्शन से कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर्स हैं 3540-6808 या 3540-6811। ओके, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन। हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए, हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहे। कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना। अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो, जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर, www.cancer.gov.hk/breastcancer। अपना ख्याल रखो। ओके, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। यह है जी चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बच्चा अब्यूस या पीड़ित दिखे तो मदद का हाथ बढ़ाइए, इससे किसी बड़ी ट्रेजेडी से बच सकते हैं। बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए आगे आएं। चाइल्ड अब्यूस एक क्राइम है, चाइल्ड अब्यूस रिपोर्ट करना हर किसी की जिम्मेदारी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 2343-2255, या फिर ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.swd.gov.hk। बढ़ते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं कि कहाँ से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में

10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहाँ जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो, अपनी जॉब की जरूरतों के बारे में डिस्कस करो और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में है। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jobs.gov.hk/em या इंटरएक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है, बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और एल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशन्ड जगह में रहो। बाहर ज्यादा मेहनत वालों वाला काम मत करो। आउटडोर एक्टिविटीज सुबह या शाम को प्लान करो। आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छांव में आराम करो। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें। बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें। यूवी इंडेक्स हाई है तो सीधा धूप से बचो। SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाओ। यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छांव में रहो। अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो, उल्टी जैसा जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो। गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.chp.gov.hk पर। ओके, इसी के साथ हमारे सारे अनाउंसमेंट हो गए जी खत्म। अब आते हैं सीधा गानों में। ओके, सो द फर्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सनी और ये गाना है होल्ड ऑन बाय अर्जेंटिलो। एंजॉय द सॉन्ग।

0: All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. ये जी अनोनिमस ने रिक्वेस्ट किया है. एंड लेट मी जस्ट ओपन अप द मैसेज. हाँ जी, इन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है नरक बाय बी पराक और डेडिकेट. अभी हाँ, डेडिकेट किसी के लिए नहीं है. एनीवेज, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज नरक बाय बी पराक. एंजॉय द सॉन्ग.
1: दो प्यार करने वाले नु
2: कदे कोई वक्त नहीं कर सकता
1: जब तक
2: वो आप ना
1: चाहो.

All right, guys, welcome back. बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय मनी. गाने का नाम है गुत बाय अर्जेंटिलो. एंजॉय द सॉन्ग.

Alright guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले requested गाने पर और इसके बाद मैं लूँगा जी आप सबसे अलविदा और बाकी का जो half होगा ये पहला half हो गया है. अब इसके बाद लेंगे हम छोटा सा break और break के बाद जो गाने लगेंगे वो non-stop लगेंगे. तो मैं बता दूँ कि अब जो गाना लगेगा वो है सनी सिंह ने request किया है self-trained by Khan Benny and dedicated to his brothers Amrit Bachi and everyone inside from sunny Canada. Baki ke jo gaane hain main abhi bata deta hu. Chloe Cam has requested Ae Khuda by Murder 2. Harman has requested At Peace by Karan Aujla. Randhawa has requested Madam Ji by Masoom Sharma. Davinder ji ne request kiya hai Aane Wala Pal. Very beautiful song. Bahut purani film ka gaana hai ye. Golmaal film thi. तो बहुत अच्छा गाना है ये. एंड उसके बाद फहीम हैज रिक्वेस्टेड 47 बाय सिद्धू मूसेवाला. रूबी हैज रिक्वेस्टेड दुनिया बाय गुरनाम पुल्लर. सोनिया हैज रिक्वेस्टेड ग्लोरियस बाय अर्जुन टिल्लो. अनम हैज रिक्वेस्टेड सिफ्ट बाय पलवान. एंड अफाई हैज रिक्वेस्टेड जुत्ती बाय नोमी जट. एंड यसीन हैज रिक्वेस्टेड आइज ऑन मी बाय सिद्धू मूसेवाला. एनीवेज मैं लेता हूँ जी आप सबसे अलविदा. मिलते हैं जी नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम सेम प्लेस. तब तक के लिए जी चिल करो, टेंशन ना लो, चढ़ी कला ते चढ़ती कला च रहो. रब रखा. गुड नाइट एंड गुड बाय. दिस सॉन्ग इज सेल्फ ट्रेन्ड बाय खान बेनी. एंजॉय द सॉन्ग. बाय बाय.

0: कोई असाइनमेंट या फोटोशूट हो तो बता देना।
1: लेकिन तुमने तो मना कर दिया था ना।
0: मना नहीं, भरोसा किया था।
1: ठीक है, कुछ होगा तो बताता हूँ।

कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा।